0: लिखा होता है ना उसपे कि इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना सोडियम मिलेगा, इतना फैट मिलेगा, तो वो तो लिखा ही रहता है। तो उसमें क्या समस्या है फिर कि लोग फिर भी तो खरीद ही रहे हैं, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, जो कंपनी है उन्होंने तो लिख दिया सब कुछ इसमें ये सब कुछ है। और आप भी कह रहे हैं कि लोगों में थोड़ा बहुत अवेयरनेस तो है ही कि भाई ये चीजें अति में ठीक नहीं है, तो फिर वो लेबलिंग वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या?
1: देखिए, आप खुद ही जब आप पैकेट का कोई चिप्स का पैकेट खरीदने जाएं या चॉकलेट का पैकेट खरीदने जाएं, आप कितना वक्त बिताते हैं वो लेबल्स पढ़ने में। बड़ी बारीक टेक्स्ट में वो लिखा रहता है, और वो 100 ग्राम्स में लिखा रहता है, परसेंटेज में होता है या पर वॉल्यूम होता है। आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, मतलब 6 से 10 सेकंड में आपको एनालाइज भी करना है और एक जजमेंट भी बनाना है कि आपके लिए हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, नमक ज्यादा है या चीनी ज्यादा है या वसा ज्यादा है, ये हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इवन बहुत सारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के लिए भी संभव नहीं है 6 से 10 सेकंड में। और हम 6 से 10 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगाते हैं किसी भी पैकेट को खरीदने में। 30 सेकंड यदि हम लगा देते हैं तो संभावना या ये ही होती है कि हम शायद ना खरीदें। तो 6 से 10 सेकंड में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट, हम देखते हैं प्राइस, हम देखते हैं ऑफर है कि नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्यों लेबल की जरूरत है बैक ऑफ पैकेट से फ्रंट ऑफ पैकेट में? क्योंकि बैक ऑफ पैक में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, मिनरल्स की होती हैं, कार्बोहाइड्रेट की होती है, विटामिन्स की होती है, फैट होता है, इवन एनर्जी का किलो कैलोरीज में होती हैं। ये सारे एनालिसिस आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज है, एक आम आदमी, एक आम गृहिणी या एक आम व्यक्ति अपने बच्चे के लिए जब वो कुछ भी खरीदने जा रहा है या अपने लिए खरीदने जा रहा है, तो वो ये जजमेंट नहीं कर पाता है कि ये प्रोडक्ट हेल्दी है या अनहेल्दी है। ये कंपनियों को बताना होगा, और उसके लिए पूरी दुनिया में एक जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट डिसाइड की गई, जो भी तमाम एक्सपर्ट इस पर बात करते हैं, वो ये है कि एक पैकेट के सामने में जो भी मात्रा उसमें ज्यादा है, यदि चीनी, देखिए यहां पर सिर्फ 3 तत्वों को लेकर बातचीत हो रही है लेबलिंग में, नमक, चीनी और वसा, क्योंकि इन तीनों से ही बीमारियां होती हैं। मिनरल ज्यादा है, विटामिन ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब ये 3 चीजें में से जो भी ज्यादा है वो यदि लेबल पैकेट के सामने में होगा तो आपको देखकर तय करने में 6 सेकंड में आप तय कर लेंगे आपको लेना है या आपको नहीं लेना।
0: तो आप कह रहे हैं कि जो भी चीजें लिखी होती है एट द बैक ऑफ द पैकेट, आप कह रहे हैं कि वो सामने होना चाहिए?
1: सारी चीजें नहीं होनी चाहिए।
0: हाँ,
1: जो चीजें जिसे कहते हैं न्यूट्रिएंट ऑफ कंसर्न, जो
0: न्यूट्रिएंट
1: ऑफ कंसर्न या नेगेटिव न्यूट्रिएंट जो है, उनमें जो ज्यादा है, जो विद इन, अब ज्यादा और कम का भी फैसला कैसे होगा वो भी एक है, वो भी एक सवाल उठता है। तो उसके लिए थ्रेशोल्ड बनेंगे, स्टैंडर्ड बनेंगे, ऑब्वियसली उसी पर तय होगा कि हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। तो जो भी थ्रेशोल्ड बन रही है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी रीजन्स के लिए एक स्टैंडर्ड दे रखा है, भारत के लिए भी स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के आधार पर जो चीज ज्यादा है, यदि नमक ज्यादा है उसमें, तो सामने ये आ जाएगा हाई इन सॉल्ट, या टेबल सॉल्ट का की एक इमेज लगाकर बताया जा सकता है। तो उससे लोग ये समझ सकते हैं कि इसमें नमक ज्यादा है, मुझे लेना है या नहीं लेना, यदि लेना भी है तो मुझे मॉडरेशन में खाना है।
0: हाँ, मतलब जिसको शायद ये लगे कि उसको हाइपरटेंशन है या ऑलरेडी उसको पता है उसको ब्लड प्रेशर है, तो उसको एकदम सामने दिख जाएगा ना ये है, या हो सकता है कि आप, क्योंकि ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं एक तरह से, जेनेटिक्स में भी आता है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, तो उनको ये समझ जाएगा कि हाँ अगर मेरे पेरेंट्स को है तो मुझे कम से कम ये अवॉइड करना है जिसमें ज्यादा नमक है या जिसमें ज्यादा शुगर है, या उसको मॉडरेट अमाउंट में लेना है। तो वो सामने होने से आपको लगता है कि ज्यादा फर्क पड़ेगा, ऐसा क्या? ऐसा कोई और एग्जाम्पल है हमारे सामने किसी और देश में जो इस तरह की फ्रंट लेबलिंग से वहां पर असर पड़ा हो?
1: बिल्कुल, ऐसे कई देश हैं जहां पर फ्रंट ऑफ पैकेट लेबलिंग रेगुलेशंस हैं, कई देशों में मैंडेटरी है, कई देशों में वॉलेंट्री है, कई तरह के लेबल्स हैं। जो वार्निंग लेबल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो चेतावनी वाला जो लेबल है, वो चिले में है, मैक्सिको में है, इसराइल में है। इसराइल में जो मॉडल है वो बहुत ही बेहतरीन है, मैक्सिको में, अर्जेंटीना में भी मॉडल बहुत ही बेहतरीन है। उसमें वो सामने में

0: हेक्सागोनल फॉर्म में एक तस्वीर बनाई हुई है जिसमें देखकर पता चल जाता है कि इसमें चीनी ज्यादा है या नमक ज्यादा है या वसा ज्यादा है. उसका असर यह पड़ा है, एक तो कंजम्पशन कम हुई है, दूसरी चीज ये नहीं है, हम ये इस लेवल के पीछे उद्देश्य ये नहीं है कि पैकेज फूड का कंजम्पशन कम हो जाए.
1: हमें मेरे ख्याल से वो संभव भी नहीं हो पाया,
0: संभव भी नहीं है और उसकी बात भी नहीं हो रही है. क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है यदि भारत में कहें तो 10% जॉब क्रिएट कर रही है फॉर्मल सेक्टर,
1: 10%
0: एक अच्छी खासी जीडीपी में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो इंडस्ट्री बहुत जरूरी है. ये क्या होगा उससे फर्क जो चिले में हुआ, जो मैक्सिको में हुआ, अर्जेंटीना में हुआ, इसराइल में हुआ, या इवन डेवलप कंट्री जैसे यूके या फ्रांस में हुआ, वो ये होगा कि रिफॉर्मुलेट होगी प्रोडक्ट. नमक चीनी जो है वो टेस्ट के लिए, तो अब इसमें रिफॉर्मुलेट होगी, चीनी या नमक की मात्रा कम की जाएगी. अब देखिए टेस्ट जो है ना वो परसेप्शन है. ये कहा यह जाता है कि भारतीय जो है ज्यादा नमक खाते हैं या ज्यादा चीनी खाते हैं, लेकिन आप ट्रेडिशनल फूड कई चीजें उठा लीजिए, मिठाइयों में कहेंगे बहुत मीठा भी होता है, लेकिन रसगुल्ला जब खाते हैं तो लोग मीठा वाला रसगुल्ला नहीं खाना चाहते. रसगुल्ले की स्पेशलिटी ये नहीं कि वो मीठा है, रसगुल्ले की स्पेशलिटी है कि वो स्पंजी है. तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं फूड का मामला नहीं है कि यदि इंडस्ट्री चाहे तो जैसे हर के हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा दिया है और आजकल हर के फोन में वॉलेट हो गया है, लोग कैश वॉलेट लेके नहीं चलते हैं, वॉलेट हो गया है, तो कंपनियां चाहें तो कम नमक का और कम चीनी का खाना भी खिला सकते हैं.
1: बिल्कुल बात बात सही लग रही है आपकी, एकदम दम है उसमें.
0: क्योंकि ये इस पे तय होता है कि क्या मिल रहा है. ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ है कि लोगों ने डिमांड सर्वे में कहा है कि ज्यादा नमक वाली चीज चाहिए हमें, ज्यादा चीनी वाली चीजें चाहिए. यदि आज भी सर्वे की जाए तो लोग यही कहेंगे कम से कम नमक, कम से कम चीनी वाली. आप किसी भी चाय के ठेले पे जाइए, लोग क्या डिमांड करते हैं, कम मीठी वाली चाय, चीनी कम डालना. तो अवेयरनेस जो मैंने कहा बात शुरू में हो रही थी, अवेयरनेस है लोगों में लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं. भारत जो विविधताओं भरा देश है, जहां पे इतनी डाइवर्सिटी है, वहां पर लेबल ऐसा होना चाहिए जो सबके समझ में आ सके. तो कई तरह के लेबल्स की बातचीत हुई, उसमें एक वार्निंग लेबल है, एक हेल्थ स्टार रेटिंग है, न्यूट्री स्कोर है, इस तरह के तमाम लेबल दूसरे देशों में है. वहां से अनुभवों के आधार पर तय हुआ कि किसी एक लेबल को लगाया जाए. इस पर कई स्टडीज भी हुई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने स्टडी की, एम्स ने स्टडी की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस जो कि भारत सरकार का एक संगठन है, उसने भी इस पर रिसर्च किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने भी की. और ज्यादातर स्टडीज में ये कहा गया कि चेतावनी भरा वाला जो लेबल है, वार्निंग लेबल, वही होना चाहिए. एनआईएन ने यही बात कही, एम्स ने यही बात कहा. पिछले साल 2022 में, पिछले साल 2022 में एक नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी की इसी फ्रंट ऑफ पैकेट लेबलिंग रेगुलेशन को लेकर. आश्चर्य की बात थी कि तमाम स्टडीज बात कर रही थी इस पर वार्निंग लेवल पे, लेकिन इंडियन न्यूट्रिशनल रेटिंग INR जो कि हेल्थ स्टार रेटिंग से जुड़ा हुआ है,
1: तो सरकार के पास ये प्रस्ताव आया कि जो भी हमारे फूड पैकेट्स हैं उन पे हम एक हेल्थ स्टार रेटिंग देंगे कि ये 2 स्टार है ये पैकेट, ये 3 स्टार है, ये 4 स्टार है, 5 स्टार है.
0: जी, और ये प्रस्ताव हाफ स्टार से लेकर 5 स्टार तक की बात है. इसमें प्रस्ताव ये
2: जी ए बारे क्यों गलबात करने की जरूरी है, क्योंकि साढ़े लोकल भी ये जड़िया चीजा ने काफी ज्यादा अवेलेबल होंगे ने. मैं कल रात नूं देख रहा सीगा एक प्रोग्राम जिहदे च उन्हां ने आशीर्वाद आटा जिहड़ा इत्थे लोकी इत्थे भी बहुत यूज करदे आ ते उहनूं कसोटी ते तोलिया गया वी इह वाकई

0: ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਸ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा, लिसनिंग टू कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो, रेडियो सब रॉन्ग 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store opening,
0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਸ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफ

0: जो है उनका कनेक्शन भी है, तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए तो एक जो है ट्रिब्यूट होने जा रहा है टू द सोनू निगम एंड जो है फिर रफी। अगर आप मुझे अभी पूछें तो टिकट जो है दो तीन ही बाकी है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, वीआईपी तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपने जनरल टिकट लेनी हो तो स्टिल वी कैन अकोमोडेट ऑन वन टेबल, तो यू कैन कॉल जो है राइट नाउ 5878994786। और आप नहीं तो आप बोलेंगे ये सर किस तरह सोल्ड आउट हो गया, ये सोल्ड आउट हो गया है थैंक्स टू अवर बिग टीम। इस बार बहुत ही बड़ी टीम जो है रखी थी इसको, इसलिए ये बड़ा शो को मद्देनजर रखते हुए जो जो टीम में हमारे जो सारे प्यारे हमारे मेंबर्स थे उसमें से दो यहाँ पर मौजूद हैं। बीना जी, हेलो बीना जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: गुड टू सी यू अगेन।
1: ओह थैंक यू, दिस इज माय होम।
0: हम जो चार्ज करना शुरू कर देंगे अभी
1: $50 गुड टू हैव यू ऑलवेज बीना, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप?
0: लेकिन जो है शो के बारे में जो अभी जैसे मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी टीम है इंक्लूडिंग नीलम बेत, बीना जी, सलमा जी, करीम सुमार, लता पटेल, शहनाज मुर्जी, फिर जो सिद्धार्थ शर्मा, सुहेल राजा, राहत अब्दुल्ला, तबसुम मलिक, जुल राजन, गुल्ला नालवानी, जय जलाल, साक्षी, जो कि आर्टिस्ट, इतनी बड़ी टीम है। और तो बस तो ये आई थिंक ये हमारे टीम मेंबर्स की ये जो है सारी मेहनत का नतीजा है कि वी आर ऑल फुल राइट नाउ। और शहनाज इज एट द डोर एज वेल। तो यू नो अभी जैसे हमने कहा कि जो है रफी साहब का भी गाना जो अपना ट्रिब्यूट है और फिर सोनू निगम साहब का भी जो है ट्रिब्यूट है, तो लेट मी जस्ट प्ले वन ऑफ द सॉन्ग।
1: ओके
0: ठीक है ना, ताकि जो है बार टाइम शहनाज विल बी हियर एज वेल। और होपफुली यू गाइस ये जो गाने बजेंगे आई एम श्योर जो उसमें से बहुत से गाने उस दिन भी जो है चलने वाले हैं, तो उसमें ऑफकोर्स जहीर और साक्षी विल बी परफॉर्मिंग लाइव। तो होपफुली यू कैन गेट द रेस्ट ऑफ द टिकट 5878994786। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटिफुल ट्रैक।

0: Beautiful track by Rafi Saab. जी हाँ, आपको इससे बहुत से गाने सुनने मिलेंगे on Friday night, August 7. दो तीन दिन रह गए हैं at बटकवाड़ा बैंक्वेट हॉल. हमारे जो स्पॉन्सर्स है उसमें टाइटल स्पॉन्सर है गोल्डन हार्मनी केयर, फिर हमारे मेगा स्पॉन्सर है 587, मेगा स्पॉन्सर है प्राइम ब्रिज कंस्ट्रक्शन इन कंपनी 5873250011, सिल्वर स्पॉन्सर में इंडियन टेवर्न्स जो कि किचन एंड बार जो कि इंडियन फूड है वहां पर, मैमस्टर्स जो कि हमारे गुड फ्रेंड जैन कौर, कास्केट पेंटिंग इट्स बाय शफीन जीवानी, और फिर बटकड़ा बैंक्वेट हॉल जो कि हमजा बट है, और फिर हमारे वहां पर ऑफकोर्स आपके लिए जो है रेफरल ड्रॉज भी होंगे, सो मेक श्योर वहां पर जो है विल बी सेलिंग रेफरल ड्रॉज जो कि आप बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट आप जो है जीत सकते हैं, इंक्लूडिंग गिफ्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द मिर्ची रेस्टोरेंट, सिजलिंग ग्रिल, ऑप्टिमा आईवेयर, फहद रेस्टोरेंट, आइज बाय बशीर, और जो है बॉस्टन पिज्जा, और प्लस जो हमारे फोटोग्राफर है सोहेल काशिफ, हमारे वीडियोग्राफर वीडियो प्रोमो जो बना रही है वो दैट्स माय डॉटर आयरा लारक, एंड ऑफकोर्स रेडियो सुसंगम, एंड सलाम नमस्ते कैलगरी आर आवर मीडिया पार्टनर. साउंड होगा बाय करीम सुमार, और वहां पे डांस परफॉर्मेंस होगी बाय गुलनार डालवानी जो कि अपना ब्रेक में उनकी जो परफॉर्मेंस आप सबको देखने के लिए मिलेगी. नाउ वी हैव अवर सेकंड लाइक आवर टीम मेंबर इज हियर एज वेल, शहनाज़ डायमंड. शहनाज़ अली मदर, हाउ आर यू? गुड टू सी यू अगेन. Maybe you want to bring your mic a little closer to you?
1: Yeah.
0: And of course, Johe, Shehnaz, Johe, our team member, and always willing to help us. Thank you so much, Shehnaz, for everything you do. And are you ready for the show?
1: I am.
0: I know.
2: Shopping tomorrow.
1: Yeah. Oh, nice.
0: You know what? When we do a show, we have so much to the economy, eh?
1: Yeah, of course.
0: Yeah.
1: That's the idea.
0: Ah, I know.
1: Yeah, we are all like organizers here. Why not? Just helping the economy.
0: Ah, mere ghar pe jo dil do ladies hai, wo bhi kahin ja rahi hai kal. Wo bhi apni shopping ke liye ja rahi hai.
1: Maine already kar li.
0: Acha, you.
1: Oh, nice.
0: Dinner's ready to go. Nahi to ye jo Friday night ko raha hai at jo hai बटकर है बैंक्वेट हॉल, डोर्स ओपन 7:30, डिनर स्टार्ट्स अराउंड 8:30, और फिर म्यूजिक पार्टी स्टार्ट्स एट 9:30, सो इट्स विद द डिनर, तो आप मेक श्योर यू आर अर्ली. ऑल द सीट्स विल बी रिजर्व इंक्लूडिंग वीआईपी एंड जो है जनरल टिकट्स, ओनली 5-6 टिकट्स लेफ्ट फॉर द जनरल टिकट्स. लेकिन मीना जी, जब ये कॉन्सेप्ट आया आपके सामने मोहम्मद रफी एंड सोनू निगम, व्हाट डिड यू थिंक?
1: आई लव बोथ ऑफ देम.
0: यस, यू नो दैट.
1: Fortunately, I met

0: मुझे लागे ना नजरिया,
1: मुझे
0: लागे ना नजरिया, ये रहा ऊपर
1: लागे ना
0: नजरिया
1: नजरिया
0: या
1: इफ आई कैन फायर बिजुरिया
2: हाँ बिजुरिया बिजुरिया
1: देयर वी गो लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक बाय सोनू निगम

ये सुनो सोनू निगम का गाना जो कि आई एम श्योर कि यू विल लिसन लॉट ऑफ अदर सोनू निगम सॉन्ग और जो अपना फ्राइडे अगस्त की 7 तारीख को जब भी व्हेन वी डू द फिर रफी शो एट बन बटका है बैंक्वेट हॉल. आज का जो शो है इसको स्पॉन्सर किया है कंट्री हिल्स टोयोटा. इनका कहना है इफ यू लुकिंग फॉर एनी कार एनीथिंग स्पेशली टोयोटा ऑफ कोर्स दिस इज द ओनली वन कॉल 4032901111 थिंक टोयोटा थिंक द जायंट कंट्री हिल्स टोयोटा. इनका इनकी जो वेबसाइट है www.cstoyota.com यू कैन चेक 24 आवर्स अ डे. मोबाइल मॉडल स्पेशलिस्ट रूबीना कासिम अली शी वर्क्स फॉर

0: or TD Bank. If you need, if you're looking for any mortgage, you can call her 403-870-7069. Care Circle Home Healthcare Calgary.
1: Blocked. Okay.
0: Care Circle Home Health Calgary, and phone number 587-900-0290. If you have any senior patient, तो ये जो है Melbourne Healthcare से direct जो है direct billing भी करते हैं, so you don't have to worry about anything. Hamza Butt, जो कि हमारे बटकर है banquet hall से, इनका phone number 587-352-0094. Nasim Jewelers Calgary, if you're looking for any Pakistani designed gold jewelry in Calgary, this is the only place. इनका phone number 825-987-5000. Eyes by Bashir, if you're looking for any contact lens and glasses or any jo hai prescription glasses, so you can call Bashir at 403-720-3937. Agar aapko koi IT consult jo hai any service chahiye, to Siddhartha and Sakshi Sharma, they will be able to help you. Inki jo company Sai Ram IT Consulting in company, 306-715-9707. Anything else? Salma ji, आप कुछ बोलना चाहेंगी?
1: मैं बोल पूछना चाहूँगी कि
0: yes.
1: ये जो raffle के tickets हैं, ये आप कितने के बेच रहे हैं? उसके लिए हम अपना cash लेकर
0: 3, 4, 5, 8 for 10.
1: Huh?
0: Same always we do.
1: Yeah.
0: 3, 4, 5, 8 for 10. Yeah. And of course, people can win gift certificate from Mirchi Restaurant, Sizzling Grill, Optima Eyewear, Fahd Restaurant, Aizbe Bashir. और वहाँ पर जो है अपने मैमस्टर की भी होगी, बोस्टन पिज्जा की भी होगी, सो देयर आर सो मेनी ऑफ देम, सो यू जस्ट कम एंड हम आपको और भी खिलाएंगे, खिला के आपको भेजेंगे, और फिर बाद में आप जो खाते रहे इसके बाद भी आप.
1: So Shinaz, what do you think? We are going to have a lot of fun, and what are you anticipating?
2: Well, I have my own little plan with my friends that I'm not good at Urdu, but I'm going to try and make khilaungi, me pilaungi, me khilaungi, or
1: me na nachungi, me na chaungi, na. Yeah, that's right. Yeah, this is like, it's like a nice social thing, and we all get together. We, you know, we can't see everyone all the time, but you know, these are the things we get together, we talk, we eat, we laugh, we listen and enjoy the music, and you know, this is a very good thing to have, and especially it's not huge, that sometimes you can't even meet everyone.
2: Yes.
1: Yeah, it's a proper manageable, number manageable, and we meet everyone kind of, so this is what I like. Smaller gatherings I enjoy more than larger gatherings. Yeah.
3: Well, only 3 more tickets are left.
0: That's
3: so
0: it.
3: We've sold most of it.
0: That's it.
3: So that's 3 tickets.
1: Chale jaye. You'll see. It happens at the door.
0: और ये जो है हमारी जो अपना शहनाज है, वो इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे है, उनसे पूछे बगैर कोई अंदर आ भी नहीं सकता.
1: हाँ भाई.
0: She's got the whole control.
1: Yeah, that's right.
0: Yeah, she's got the whole control.
1: No, it's good.
2: Enjoy doing it. And I've worked with Salma as well.
1: It works out very well. Yeah, it goes well. We do it properly.
0: Okay,
1: yeah.
0: But first, my sponsor is Golden Harmony Care. They are the senior citizen. Agar aapne jo hai किसी सीनियर का अगर आपको जो है टेकर करवाना हो, सो दे कैन टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्लस हमारे जो मेगा स्पॉन्सर है, इट्स अ प्राइम ब्रिज जो है कंस्ट्रक्शन कम, इनका फोन नंबर है 587-325-0011. और फिर इंडियन टेवन किचन एंड बार मेमस्टर्स, जो कि इंडियन स्नैक फूड कास्ट एंड प्रिंटिंग एंड बट कड़ाही बैंकवेट हॉल. हमारे फोटोग्राफर सुहेल काशिफ, वीडियो प्रोमो बाय आयरा लारक, एंड ऑफकोर्स रेडियो ससंगम एंड सलाम नवाज कैलगरी आर द मीडिया स्पॉन्सर. तो लेते हैं छोटा सी ब्रेक. ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक. आपने जाना कहीं नहीं है. कीप लिसनिंग टू सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन रेडियो ससंगम 94.7 FM.
4: डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड़ो, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार. ओएसिस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन, चाहे गल होवे बच्चा दी या फिर बुजुर्गा दी. इथे सारेया लई सुविधावां मौजूद हन. अपॉइंटमेंट नहीं बनी, कोई चक्कर ही नहीं, सीधे चले आओ. इथे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम. फैमिली केयर तो के मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब

0: नाल एक बार जरूर गल बात करो। जग्गी ढिल्लों दा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445।
1: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन।
2: ओहो, रह गए ना फेर पिछे, मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच, ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने, ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो, ते जल्दी जल्दी गल करके कोई हल लब्बो, ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: वेलकम बैक टू सलाम नमस्कार केएलजी ऑन रेडियो सुगम 94.7 एफएम। जी हां, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिर रफी इवेंट जो कि होने, बल्कि अपना कॉन्सर्ट जो कि होने जा रहा है दिस फ्राइडे नाइट को एट बैंक्वेट हॉल, जो कि बटकड़ाई बैंक्वेट हॉल। डोर्स ओपन एट 7:30 एंड डिनर स्टार्ट्स एट 8:30। सर शीना जी, यू नो एड एनीथिंग, कितने बजे लोग आए हैं, एवरीथिंग, यू वांट टू गिव द डिटेल प्लीज।
4: या Well,
3: yeah, it's 7:30,
4: so hopefully we'll be there for 7.
3: Yes, we'll be there early.
4: Yes.
5: Yeah.
4: And then people can come and just, you know, get comfortable, I guess.
3: Yeah, yeah.
5: Yeah. And mingle with each other.
4: Yeah,
5: and
4: that's right.
3: It's like jo hamare photographer Sohail Kashif, he wo to jaldi aa jayenge.
4: Achha.
3: And just, you know, take some pictures by the time everyone get ready or everyone is coming in.
4: That's right.
3: Hall will be set, inshallah. Jo sound check bhi ho jayega jab tak.
4: Yeah.
3: And we all are ready to roll.
4: Yeah. That's very important, the sound check. Yeah.
3: Yeah.
5: And there's lots of parking.
3: Yes.
5: So not to worry.
4: Yeah,
3: that's right. Or jo general tickets are available on Eventbrite as well. Agar aapne pay karna hai via Mastercard, Visa card, anything, you can just buy through Eventbrite. It's with the Phir Rafi.
4: Four, five.
3: Jisko lena ho to anyone want to spend left, anything. Yeah. Yeah.
4: Call me.
3: Yeah, call Shina. Yeah, what's your number?
4: 403-607-6535. I'm open
5: 24/7. Oh, wow. That's nice.
4: Please call her. Don't call me. She's doing binge watching today, so don't disturb her.
5: No, I'm not available.
4: Yeah, that's right.
3: तो क्या सुनाने जा रहे हैं? एहसान हुआ जो गाना बात कर रहे थे, तो लेट्स एंजॉय वन मोर ट्रैक बाय मोहम्मद रफी साहब।

0: सुपर डुपर सॉन्ग बाय सोनू निगम जी. यस, तो आपको फिर से एक बार फिर से इंशाल्लाह विल सी यू एवरीवन. जिन्होंने टिकट नहीं ली है तो वो जल्दी जल्दी जो है टिकट ले ले. 5878994786 अपने सोशल मीडिया पे पोस्टर अवेलेबल है. ऑल द नंबर्स आर देयर. फिर रफी जो इवेंट अपना कॉन्सर्ट होने जा रहा है, ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफी एंड सोनू निगम साहब. हमारे दो के जो टीम मेंबर हैं बीना जी एंड शेनाज मुझे यहाँ पर मौजूद
1: हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इट्स वेरी नाइस ऑफ यू टू कम, टेक टाइम एंड ऑलवेज सपोर्टिंग दीज इवेंट्स विद जलाल एंड मी व्हेन वी डू एनीथिंग. सो थैंक यू अगेन एंड वी विल हैव लॉट ऑफ फन ऑन फ्राइडे. And enjoy the show and listen to Mohammad Rafi's and Sonu Nigam's
2: song.
1: Thank
2: you, both of you, for having both of us.
1: Yeah, no, you're more than welcome.
0: You're welcome. Yeah, and Shinaz, you want to say anything?
2: Just this. Yeah. The gift.
1: Yeah.
0: But Bina ji ne gift laya hai.
1: Because inke aap choti si poti aayi
0: hai. Yes, granddaughter.
1: Granddaughter and wow. She brought chocolates for us. Thank you. Thank you so much. Thank you.
0: हमारे पास गेस्ट मौजूद होंगे. हमजा बट जो के बटकड़ा ही के ओनर है, सो ही इज गोना बी माई गेस्ट. तो मिलते हैं कल. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग. सलाम नमस्ते कैलरी ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM.
3: The time is 9 p.m.
4: You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: ते बच्चियां नू फेर नहीं मिल होना दो दिन।
1: ओहो रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनिया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है ते ओता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस।
2: हेलो गोपी शुक्र है तू फोन चुक लिया जिद्दण दा नवा घर लिया सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
3: ओ सारे डरदे नहीं चकदे उहनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा कौन इन्ने भारे समान नूं हथ पावे।
2: ओ नहीं भरावा मैं इंज नहीं करदा आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
4: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790 स्टार मूविंग।

रेडियो सुरसंगम 94.7 एफएम सुन रहे सारे श्रोतियां नूं कुलदीप सिंह वल्लों सत श्री अकाल जी। अज दिन बुधवार अगस्त महीने की 5 तरीक सन 2026 हुण तो लैके 5 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ रहेगा। 5 बजे सवलीन कौर जसड प्रोग्राम पेश करनगे, 8 बजे जलाल जी प्रोग्राम पेश करनगे।

0: साल हो गया गाना सुनती नूं। बस कैलगरी च कार लैण दीआं फीलिंग आई लई जायो। वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होण दा मन बना लिया है। उन्हां दे आउण तो पहला मैनू घर चाहीदा है।
1: मेरी कल ही गल होई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल, जिन्हां दी सलाह नाल हुण घर इक नहीं दो लवांगे, पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई। मैं सुनिया जग्गी ढिल्लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे आ।
0: जी हां, मैक्सवेल सेंट्रल रियलिटी नाल काम करदे जग्गी ढिल्लो नाल इक वार जरूर गलबात करो। जग्गी ढिल्लो दा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445।
2: ओहो, आज फिर नहीं लोड मिलिया।
3: की होया?
2: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फिर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फिर नहीं मिल होना दो दिन।
3: ओहो, रह गए ना फिर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लब्बो, ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
4: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
5: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उन्हां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा, कौन इन्ने भारे समान नूं हाथ पावे।
4: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा, ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
6: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 4038701790 4038701790। स्टार मूविंग।